लिएले आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन एसी को कम्प्लिट रेन्ज 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हरेक घरको खुशी घर घरमा एलजी एलजी लाइफ्स गुड।